किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक छोटा सा गांव था, वहां पर एक बुजुर्ग आदमी और उसका पोता एक गधे के साथ अपने सफर पर निकले थे। पहले दिन पोता गधे पर बैठा था और दादा चल रहे थे। रास्ते में कुछ लोग बोले, वाह बच्चा मजे कर रहा है और बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है, तो उन्होंने जगह बदल ली।

0: है ये लोगों का काम है कहना, तो उनको इग्नोर करना और बस आगे बढ़ते जाना। यही थी आज की कहानी का एक किस्सा, बताइएगा जरूर कैसा लगता है। डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान एंड स्टे ट्यून। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: बोलना रुक दी।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है और मौसम में बारिश शुरू है फिलहाल और इस वक्त ना तो सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट 5 टिप्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये है कि इस मौसम में ना तो आप उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिए। बारिश में पानी से होने वाले जो बीमारियां है वो बहुत बढ़ती है, इसलिए साफ पानी पिए और उबला और फिल्टर हुआ पानी यूज करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्ट्रीट फूड से थोड़ा बचिएगा। इस मौसम में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। घर का ताजा और गर्म खाना बेहतर ऑप्शन है आपके पास और स्ट्रीट फूड से थोड़ा अवॉइड करें। स्ट्रीट फूड को आपको नजर भी आए तो उसको कहना भाई मुझे माफ कर, अभी तो मैं तेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि ये आपकी हेल्थ खराब कर सकता है इस मौसम में। और हाँ, भीगने का तो बहुत आपको शौक होता है ना, तो भीगने के बाद तुरंत कपड़े बदल दीजिएगा। गीले कपड़ों में देर तक रहने से सर्दी, खांसी और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। एंड एक मच्छर भाई बहुत कुछ कर सकता है, तो मच्छरों से जरा बच के रहिएगा। घर के आसपास पानी जमा ना होने दे और मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है इस मौसम में। एंड फिफ्थ वन इज इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना ही खाए। मौसमी फल, हरी सब्जियां, अदरक, हल्दी और विटामिन सी से भरपूर चीजें अपनी डाइट में शामिल करें। और छोटी सी सलाह ये भी है कि अगर लगातार बुखार, उल्टी, दस्त या तेज कमजोरी महसूस हो तो खुद दवा ना ले, बजाय डॉक्टर के पास चले जाए, उनसे दवाई लिखवाए और अपना ट्रीटमेंट करवाए। बारिश का मौसम जितना सुहाना है ना उतनी सावधानी जरूरी है। तो ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए।

0: मेंटल हेल्थ ठीक रखिए भाई और ओवर थिंकिंग को भी कम रखिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। तो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, ओवर थिंकिंग पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कम करने के लिए कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स बताइए।
1: सबसे पहली हैबिट तो है टाइम पर सोना और टाइम पर जगना, है ना, वही होना चाहिए। वो हमारे हाथ में है, लेकिन लाइक वी डिस्कस्ड कि हम करते नहीं हैं जो सिंपल चीज़ें हैं। तो सबसे पहला टिप है कि आपका स्लीपिंग टाइम फिक्स चाहिए एंड वेकअप टाइम फिक्स चाहिए, एक स्केड्यूल बनना चाहिए। सेकेंड चीज़ है हमारी फिजिकल मूवमेंट रोज़ होनी चाहिए। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, है ना, थोड़ा ग्राउंड एक्सरसाइज ही कर लीजिए, भले ही 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन वो रेगुलरिटी से होना चाहिए। फिर डिजिटल टाइम जो है, एक फिक्स्ड फ्री डिजिटल टाइम या डिजिटल फ्री जोन, ऐसा कुछ हमको क्रिएट करना होगा लाइफ में कि जैसे मान लीजिए रात में 10 से 12 या 9 से 11 या जो भी है, आप बिल्कुल फ़ोन को टच नहीं करेंगे और 10 मिनट माइंडफुल रहना है, एक जगह बैठ के आंखें बंद करके बस सोचना है कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया और क्या क्या सही हो सकता था और बेहतर हो सकता था।
0: सो मैम ने जो चीजें बताई है वो फॉलो कीजिएगा और उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। सो ज्यादा सोचिए मत, और भी सोचने के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहे होंगे, वो माइंड में सवाल क्या है बताइए, पूछिए हमसे 9359320080 इस नंबर पर।

गुड मॉर्निंग मेरे सुकून के साथियों, क्या हालचाल? एकदम मस्त बढ़िया। अभी तो आपकी नींद भी हो गई होगी और आपका दोस्त और होस्ट बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। So, वक्त हो चुका है आज की फरमाइश का। तो चलिए फिर आपकी फरमाइश पर कुछ बेहतरीन से गाने हम प्ले करेंगे। तो आज हमें फरमाइश आई है शैलेश काय की तरफ से इस गाने की।

क्या गाना है यार, आ जा सनम मधुर चांदनी में हम, लता मंगेशकर जी और मन्ना डे इनकी आवाज में गाना भी हम एंजॉय करते हैं शैले जी की फरमाइश पर। तो दोस्तों अगर आपकी भी फरमाइश हो तो बिंदास बेझिझक व्हाट्सएप कीजिएगा, शर्माइए मत यार, बिल्कुल बताइए और मुस्कुराते रहिए और शैले जी का गाना भी हम प्ले करते हैं।

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 और 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

महानगर पालिका बस कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड तो काम नजर नहीं आता। चाहे फिर अपना जालना रोड हो या फिर कोई गली हो, सब जगह बस पानी आपको नजर आएगा भरा हुआ। लेकिन महानगर पालिका जहाँ पर है उनके पार्किंग में ही घुटने तक पानी भर गया था। थोड़ा इससे सबक लिया होगा महानगर पालिका ने। देखते हैं वो कब तक ये काम पूरा कम्प्लीट करेगी और अब बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम हमें कब तक फेस करना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। स्टे ट्यून्ड एंड

0: अगर आपको ट्रैफिक जाम का मजा उठाना है तो मुंबई पुणे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यही पूरा मजा आपको अपने शहर छत्रपति संभाजीनगर में मिलने वाला है। सच्ची कह रहा हूँ मैं, झूठ बिल्कुल नहीं कहता। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और अपने शहर में आजकल ना तो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की ट्रैफिक कर रही है और अपने शहर का सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है जालना रोड। और इस जालना रोड के ऊपर ना दिन में से 3 से 4 बार लंबी लाइन लगती है ट्रैफिक की, और पिछले कुछ दिनों से यानी कि 8-1 दिन से ना तो ये कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। ये लाइन कितनी होती है पता है? तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी ये कतार होती है, जिसके अंदर अगर आप फंस गए तो आपको बाहर निकलने में आराम से आधा घंटा तो लगने ही वाला है। और एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको अक्सर ट्रैफिक मिलने वाला है वो है मोरना का ब्रिज के नीचे का एरिया और बाबा पेट्रोल पंप। अब बाबा पेट्रोल पंप की ट्रैफिक तो हम सभी को पता है, लेकिन मोंडाना का ब्रिज के नीचे आजकल बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है और वहाँ का जो रास्ता है ना वो भी इतना खराब हो गया कि भाई वहाँ से गाड़ी चलाते वक्त महसूस होता है कि हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। और दूध डेयरी से हम क्रांति चौक की ओर जाते हैं तो क्रांति चौक ब्रिज के नीचे ना तो एक बैरिकेड लगाया हुआ है, जो कि वहाँ पर एक गड्ढा हुआ तो उसको ठीक करने का काम प्रशासन ने किया था, आपको नजर आएगा अगर आप वहाँ से जाओगे तो। लेकिन 2 बरसात के बाद उस गड्ढे का मटेरियल पूरा बह गया, तो जरा गाड़ी आराम से चलाइएगा, सेफ चलाइएगा, बैरिकेड भी हो तो उसका भी ख्याल रखिए। और बाकी हमें इस ट्रैफिक से कब मुक्ति मिलेगी ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ भाई। सो अपने घर से थोड़ा वक्त से पहले निकलिएगा ताकि आप वक्त पर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, वरना ट्रैफिक में फंस जाओगे तो बड़ा पछताओगे। स्टे ट्यून्ड। पाळीव प्राण्यांच्या आरोग्याची आता खास काळजी MGM पेट केअर पेट क्लिनिक। आरोग्य तपासणी, उपचार, शस्त्रक्रिया, लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी। MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6। कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130। MGM पेट केअर।
1: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
3: ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स BTech 4 years आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, सायबर सिक्युरिटी, Electronics Engineering, VLSI Design and Technology, Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Chhatrapati Sambhajinagar.

यू नो व्हाट, व्हाट्सएप का ना तो एक नया फीचर आने वाला है यूजर नेम वाला, पता है इस बारे में? आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MGM 90.8 FM। देखो मतलब अब हर बार अपना मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी, आपको लोग आपको आपके यूजर नेम से ही ढूंढ सकते हैं व्हाट्सएप पर। सुनने में तो ये फीचर ना तो काफी शानदार है, जैसे सोशल मीडिया के बाकी अकाउंट है ना, इंस्टाग्राम पर जैसे हम यूजर नेम्स डालते हैं, फेसबुक पर अपना नाम डालते हैं और अपना आईडी मिल जाता है, कुछ इसी तरीके से व्हाट्सएप का भी होने वाला है, क्योंकि इससे ना तो आपकी प्राइवेसी और भी बेहतर हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अपने इंडिया में इस फीचर की एंट्री फिलहाल रोक दी गई है। सरकार ने मेटा से कहा है कि अभी इस फीचर को भारत में लॉन्च ना किया जाए। वजह एक है कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और फर्जी अकाउंट, ऑनलाइन फ्रॉड या किसी और की पहचान बनाकर किसी और को लूटना, ये सब चीजें इससे हो सकती है, तो इसका भी एक डर है। यानी फिलहाल सरकार और व्हाट्सएप के बीच इस फीचर को लेकर बातचीत चल रही है। जब तक सारी बातें साफ नहीं होती तब तक भारत में इसका रोल आउट रुका हुआ है। तो अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि व्हाट्सएप पर अब यूजर नेम आ गया है तो अभी थोड़ा रुकिए, रुकिएगा, ये फीचर आने में थोड़ा वक्त है और जैसे ही लॉन्च होगा आपको अपने आप पता चल ही जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या फैसला होगा, जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा सबसे पहले मैं तो आपको बताऊंगा ही। तब तक सतर्क रहिए और किसी भी अनजान मैसेज या लिंक पर भरोसा मत कीजिएगा। सोशल मीडिया सोशल तरीके से यूज कीजिए और सुनते रहिए।

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
2: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
3: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
2: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
4: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

90.8 FM। किसी से बात कर रही हो तो पहले कैसे लेटर लिखना पड़ते थे, वेटिंग लिस्ट में रुकना पड़ता था एसटीडी पीसीओ के, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। तो सोशल मीडिया के जमाने का फायदा उठाते हैं और हम सभी लोग ना तो 24/7 एक साथ कनेक्ट रह सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है RJAdnan। आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ कहना हो, आपको दिल की बात शेयर करनी हो, हैशटैग आपको कोई नहीं सुन रहा हो, तो मेरी जान मैं हूं आपको सुनने के लिए और आपके प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए। देखो मैं आपको जज नहीं करूंगा, लेकिन आपके दिल में जो बात हो, मन हल्का करना हो, तो आप जब मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। आपकी बातें मेरे दरमियान ही रहेंगी और वो कहीं और जाएंगी नहीं। बस मन हल्का होना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में क्या है पता है क्या, सुनने वाले बहुत कम है। हमें बताना तो बहुत कुछ होता है लेकिन सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं है। आर्ट ऑफ लिसनिंग कहीं दिखाई नहीं देती। हर किसी को कुछ बताए तो वो कुछ

फॉलो भी कीजिएगा और अपनी बातें भी शेयर कीजिएगा। वादा करता हूँ कि सुकून के साथ सोल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा। बाकी आपका प्यार बरकरार रखिए और सुनते रहिए MGM 90.8 FM। All is well. On MGM 90.8

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्राम ची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

चाली माया तुम जाकुवाद नहीं कोई कोई अनपातक पानी दुर्दुवानी फुलवित जाते जाई तुई धरती माता यही नाता ने तू नहीं रोले नर लेने गाव मोट वर्त गाने गाव मोट

0: तर मुलान के हीरा तारी भगतला हरभरा
1: चिकनाई भरा
0: पडवल पकड़ी वांगी वल पकड़ी मक्या से डुल तो है तुरा
1: डुल तो है तुरा
0: गाजर मुलान के हीरा तारी भगतला हरभरा अन पडवल पकड़ी वांगी वल पकड़ी मक्या से डुल तो है तुरा कश्मीर घेवड़ा सुहास घेवड़ा उत्तराखंड लाल नहीं

0: दीवाने गाऊ
1: एक लाजरन साजरा मुखड़ा चंद्रवाणी फुल लाग एक लाजरन साजरा मुखड़ा।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय, इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करे 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 FM रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसमें है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। अगर दिन थोड़ा व्यस्त था, थकाने वाला भी रहा है, तो अब समय है खुद के लिए कुछ पल निकालने का। शाम का ये समय हमें यही सिखाता है कि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए और अपने पसंदीदा गानों के साथ खुद को रिलैक्स करिए। चाहे आप घर लौट रहे हो, परिवार के साथ हो या फिर अपने काम में लगे हो, हमारी कोशिश है कि आपकी ये शाम और भी खूबसूरत बन जाए। ज़िंदगी में हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, इसलिए बीती बातों को पीछे छोड़िए, अच्छी यादों को साथ रखिए और आने वाले कल को अपनाइए, उसका स्वागत करिए नई उम्मीद के साथ। तो तैयार हो जाइए शानदार संगीत, दिलचस्प बातें और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। जुड़े रहिए दिल से इस शो में हैप्पी इवनिंग के साथ, क्योंकि जहां हर शाम बनती है थोड़ी खुश, थोड़ी खास और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स। मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा और अब आगे सुनते हैं बेहतरीन गाने ओनली ऑन एमजेम 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आजय मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है उतना ही एक सवाल हर घर में रोज सुनाई देता है, अरे कपड़े सूखे क्या? बारिश शुरू होते ही लगता है धूप ने भी हट ले ली है। सुबह धोए हुए कपड़े शाम तक वैसे ही गीले रहते हैं और अगर गलती से बाहर डाल दिए तो बारिश आकर दोबारा धोकर जाती है। सबसे मज़ेदार नज़ारा तब होता है जब घर के हर कमरे में कई कुर्सियों पर, कई दरवाजे पर तो कहीं पंखे के नीचे कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर नहीं छोटा सा लॉन्ड्री स्टेशन बन गया हो। लेकिन यही तो बारिश की छोटी छोटी बातें हैं जो बाद में प्यारी सी यादें बन जाती है। गर्मा गर्म चाय, पकोड़े, मिट्टी की खुशबू, खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें और हाँ, कपड़े सूखने का इंतज़ार भी इस मौसम का हिस्सा है। तो अगर आपके घर में भी इस समय कपड़ों की लाइन लगी हुई है तो परेशान मत होइए, थोड़ी सी मुस्कान रखिए और इस खूबसूरत मौसम का मज़ा लीजिए। चलिए अब इसी प्यारे से मौसम के नाम करते हैं एक शानदार गाना। सुनते रहिए हैप्पी इवनिंग जहाँ हर शाम होती है दिल से और हर मौसम बन आता है यादगार। आप सुन रहे हैं MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज का सबसे बड़ा कंफ्यूजन सुनिए मेरा। भाजी हेल्दी है लेकिन पाव हेल्दी नहीं है, अब बताइए करे तो करे क्या, पाव भाजी कैसे खाए भला। एक तरफ मन कहता है आज सिर्फ हेल्दी खाना खाएंगे, दूसरी तरफ सामने गर्मा गर्म पाव भाजी आ जाए तो सारे हेल्थ प्लान 5 मिनट के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं। वैसे सोचने वाली बात ये है, भाजी में आलू, टमाटर, मटर, गाजर, शिमला मिर्च जैसे कितनी सारी सब्जियां होती है, यानी भाजी तो न्यूट्रिशन से भरपूर है, लेकिन जैसे ही उसके साथ मक्खन में सीका हुआ मुलायम पाव आता है, डाइट बोलती है मैं तो चली। फिर शुरू होती है असली बहस, सिर्फ भाजी खाए लेकिन बिना पाव के मज़ा नहीं आता ना, और अगर पाव खाए तो गिल्ट फ्री कैसे रहे। तो जवाब शायद यही है, ज़िंदगी में हर चीज़ बैलेंस के साथ अच्छी लगती है, कभी हेल्दी खाना, कभी अपनी पसंद का खाना, और दोनों का मज़ा बिना ज़्यादा टेंशन लिए लेना भी ज़रूरी है। तो अगर आज आपका भी मन पाव भाजी खाने का है तो बस मात्रा में खाइए, ध्यान रखिए उस चीज़ का और हर निवाले का मज़ा लीजिए, क्योंकि खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। अब खाते पीते मूड को और भी मज़ेदार बनाते हैं एक शानदार गाने के साथ, ओनली ऑन एमजी 94.4 डिफरेंस, साथ ही तो बात है।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और ऐसे में अगर कोई बारिश वाला गाना बजाए तो शाम का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। बारिश अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाती बल्कि ढेर सारी यादें भी लाती है। किसी को बचपन में बारिश में भीगना याद आता है, किसी को कागज़ की नाव, तो किसी को गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते रहते हैं और अपने पसंदीदा गाने सुनते हैं। वैसे बारिश हमें एक बात ज़रूर सिखाती है, ज़िंदगी में चाहे कितनी भी गर्मी या मुश्किलें क्यों ना हो, एक अच्छी बारिश सब कुछ ताज़ा कर देती है। इसलिए कभी कभी हमें भी सारी टेंशन को छोड़कर थोड़ी देर के लिए किनारे रख देना चाहिए और इस मौसम का दिल खोलकर आनंद लेना चाहिए। तो अगर आपके शहर में भी बारिश हो रही है या हो चुकी है या आप बस बारिश को मिस कर रहे हैं तो ये अगला गाना आपके लिए। इसकी धुन और एहसास आपको बारिश की खूबसूरत दुनिया में ले जाएंगे। बिना किसी इंतजार के सुनते हैं ओनली ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: पालतू प्राणी आरोग्य चिकित्सा खास काळजी MGM पेट केयर पेट क्लिनिक आरोग्य उपचार शस्त्रक्रिया लसीकरण आणि अनेक पशुवैद्यकीय सेवा एकाच ठिकाणी MGM क्रिकेट स्टेडियम जवळ N6 कॉन्टॅक्ट नंबर 9860679130 MGM पेट केअर।
2: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
2: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
2: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।
4: एडमिशन ओपन MGM यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, IoT, साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। फॉर एडमिशन विजिट mgmu.ac.in और कॉन्टैक्ट 9371714253 और विजिट MGM कैंपस N6 को छत्रपति संभाजीनगर।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम जितना खूबसूरत होता है उतनी ही हमारी एक छोटी सी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अक्सर हम जल्दबाजी में चिप्स का पैकेट, पानी की बोतल या चाय का कप सड़क पर फेंक देते हैं। उस समय तो लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन सच मानिए फर्क पड़ता है। बारिश का पानी जब इस कचरे के साथ नालियों में जाता है तो नालियाँ जाम हो जाती है, फिर वही पानी सड़कों पर भर जाता है, ट्रैफिक बढ़ता है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। यानी हमारी एक छोटी सी लापरवाही कई लोगों की मुश्किलें बन सकती है। इसलिए इस बारिश के मौसम में बस एक छोटा सा संकल्प लेते हैं, कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डालेंगे। अगर आसपास डस्टबिन ना हो तो कचरा अपने साथ रखेंगे और सही जगह मिलने पर फेंकेंगे। याद रखिए, साफ सड़कें, साफ शहर और सुरक्षित बारिश, ये सब हमारी छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होता है। तो आइए इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी ले और अपने शहर को साफ रखने में छोटा सा योगदान भी दे। अब इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कुछ शानदार गानों की ओर। सुनते रहिए दिल से ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। आज की शाम एक छोटी सी आदत की बात करते हैं जो हमारे घर, हमारे शहर और हमारी पर्यावरण के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। हम अक्सर सारा कचरा एक ही डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन अगर सिर्फ 2 मिनट निकाल कर गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें तो सफाई की पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती है। गीले कचरे में आते हैं फल और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना और चाय की पत्ती, वही सूखे कचरे में आते हैं कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी चीजें। जब हम इन्हें अलग रखते हैं तो गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है और सूखे कचरे को रिसाइकल किया जा सकता है। यानी एक छोटी सी आदत लेकिन फायदा पूरे समाज और पर्यावरण को। तो आज से एक छोटा सा वादा करते हैं, घर में 2 डस्टबिन रखेंगे और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डालेंगे, क्योंकि बदलाव हमेशा छोटी छोटी आदतों से ही शुरू होता है। इस सकारात्मक सोच के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ शानदार गाने की ओर बढ़ते हैं। मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए दिल से, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे गाने दोनों जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसे खूबसूरत बनाने के लिए। स्टे ट्यून्ड, टाइम 94.8 FM, साथ है तो बात है।

0: करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, हरियाली और ढेर सारी खुशियां लेकर आता है, लेकिन इस खूबसूरत मौसम में हमारी जिम्मेदारी भी थोड़ी बढ़ जाती है। एक जिम्मेदार नागरिक वही होता है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों और अपने शहर के बारे में भी सोचता है। इसलिए इस मानसून कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे। सड़कों पर कचरा ना फेंके क्योंकि यही कचरा नालियों को जाम कर देता है। गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें ताकि उसकी सही तरीके से निपटारा हो सके। अगर कहीं पानी भरा हो तो सावधानी से निकले और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और अगर कोई ज़रूरतमंद बारिश में मुश्किल में दिखे तो जहां तक हो सके उसकी मदद भी करें। याद रखिए, एक साफ और सुरक्षित शहर सिर्फ सरकार नहीं बनाती बल्कि हम सब मिलकर बनाते हैं। हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव की शुरुआत करती है। तो आइए इस बारिश के मौसम में सिर्फ मौसम का मजा ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाए, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक ही बेहतर समाज की पहचान है। इसी खूबसूरत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ शानदार गाने ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।
1: चलो खाना ठंडा हो रहा है, कम ऑन।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। उम्मीद है कि आज की शाम आपके चेहरे पर मुस्कान लाई होगी, आपके दिन की थकान थोड़ी कम की होगी और हमारे साथ बिताए ये वक्त आपको अच्छा लगा होगा। याद रखिए, ज़िंदगी में हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, इसलिए छोटी छोटी खुशियों को जीना मत भूलिए। अपनों के साथ समय बिताइए, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आज का कोई गाना, कोई बात या कोई पल आपको पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, कल फिर इसी समय इसी शो में मिलेंगे नए जोश, नई बातों और आपके मन पसंदीदा गानों के साथ। फिर एक नई मुलाकात आपका इंतज़ार करेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और हर शाम को यादगार बनाइए। मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा, फिलहाल लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, शुभरात्रि और टेक केयर।
1: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
1: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
1: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in। ऍडमिशन ओपन MGM युनिव्हर्सिटी स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी। प्रोग्राम्स बीटेक 4 इयर्स आफ्टर HSC, कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, IoT, सायबर सिक्युरिटी इन्क्लुडिंग ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्प्युटर science and engineering, cyber security, electronics engineering, VLSI design and technology, electrical engineering, robotics and automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM campus in 6th Circle, Chhatrapati Sambhajinagar.

महानगर पालिका बस कहती है की अमी काम केले पण पाऊस राहते काम शून्य दिसतंय कुठेच दिसत नाहीये. यू आर लिस्निंग एमची एफ 90.8 एफएम आरजे अदनान तुमच्या सोबत आहे. आणि महानगरपालिका दरवर्षी म्हणत होते आणि याही वर्षी त्यांनी सांगितलं होतं की मे मध्ये त्यांचं काम सुरू आहे ते म्हणजे मान्सून पूर्वी काम. यात काय असतंय जे काय रस्ते खराब आहे ड्रेनेज सिस्टम खराब आहे ये सबको ठीक किया जाता है. और हमें भी लगा था की महानगरपालिका अब सतर्क हो गई है मानसून के पहले की तैयारी कर रही है. लेकिन पिछले दिनों में अभी कुछ दिन से अपने शहर में बहुत अच्छी बारिश हो रही है और इस बारिश के अंदर उसने महानगरपालिका का पूरा काम ओपन करके रख दिया और जहां वहां बस पानी आपको ऐसा जमा हुआ नजर आएगा. तर महानगरपालिका म्हणत होती की मान्सून पूर्व कामे संपून टाकली आहेत पण कुठे आहे काम काम केलेलं काहीच दिसत नाहीये. शहरात जागो जागी पाऊस आला तर पाणी खूप मोठ्या प्रमाणात साचतंय आणि ड्रेनेज सिस्टम त्याचा तर विचार करूच नका. गल्ली गल्ली से मेन मेन रास्तों से हर एक ड्रेनेज फुल हो जाता है. अंदर इतना सारा कचरा जमा है पानी जाने के लिए जगह ही नहीं है. तो जो काम होता है ये कहाँ होता है नजर तो नहीं आता है. बरसात भी हर साल जैसे इस साल भी वही प्रॉब्लम वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है और महानगर पालिका बस कहती है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन ऑन ग्राउंड तो काम नजर नहीं आता. चाहे फिर अपना जालना रोड हो या फिर कोई गली हो सब जगह बस पानी आपको नजर आएगा भरा हुआ. लेकिन महानगर पालिका जहाँ पर है उनके पार्किंग में ही घुटने तक पानी भर गया था. थोड़ा इससे सबक लिया होगा महानगर पालिका ने. देखते हैं अब वो कब तक ये काम पूरा कंप्लीट करेगी और अब बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम हमें कब तक फेस करना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा. स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ.

अगर आपको ट्रैफिक जाम का मजा उठाना है तो मुंबई पुणे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यही पूरा मजा आपको अपने शहर छत्रपति संभाजीनगर में मिलने वाला है। सच्ची कह रहा हूँ मैं, झूठ बिल्कुल नहीं कहता। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM, बंदे का नाम है अदनान और अपने शहर में आजकल ना तो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की ट्रैफिक कर रही है और अपने शहर का सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है जालना रोड। और इस जालना रोड के ऊपर ना दिन में से 3 से 4 बार लंबी लाइन लगती है ट्रैफिक की, और पिछले कुछ दिनों से यानी कि 8-1 दिन से ना तो ये कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। ये लाइन कितनी होती है पता है? तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लंबी ये कतार होती है, जिसके अंदर अगर आप फंस गए तो आपको बाहर निकलने में आराम से आधा घंटा तो लगने ही वाला है। और एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अक्सर ट्रैफिक मिलने वाला है, वो है मोंडाना का ब्रिज के नीचे का एरिया और बाबा पेट्रोल पंप। अब बाबा पेट्रोल पंप की ट्रैफिक तो हम सभी को पता है, लेकिन मोंडाना का ब्रिज के नीचे आजकल बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है और वहाँ का जो रास्ता है ना वो भी इतना खराब हो गया कि भाई वहाँ से गाड़ी चलाते वक्त महसूस होता है कि हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। और दूध डेयरी से हम क्रांति चौक की ओर जाते हैं तो क्रांति चौक ब्रिज के नीचे ना तो एक बैरिकेड लगाया हुआ है, जो कि वहाँ पर एक गड्ढा हुआ तो उसको ठीक करने का काम प्रशासन ने किया था, आपको नजर आएगा अगर आप वहाँ से जाओगे तो। लेकिन 2 बरसात के बाद उस गड्ढे का मटेरियल पूरा बह गया, तो जरा गाड़ी आराम से चलाइएगा, सेफ चलाइएगा, बैरिकेड भी हो तो उसका भी ख्याल रखिए। और बाकी हमें इस ट्रैफिक से कब मुक्ति मिलेगी ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ भाई। सो अपने घर से थोड़ा वक्त से पहले निकलिएगा ताकि आप वक्त पर डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, वरना ट्रैफिक में फंस जाओगे तो बड़ा पछताओगे। स्टे ट्यून्ड।

0: तुमच्या करिअर साठी योग्य पर्याय शोधताय, इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MJ युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MJ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

व्हाट, व्हाट्सएप का ना तो एक नया फीचर आने वाला है यूजर नेम वाला, पता है इस बारे में? आप सुन रहे हो आरजी अदनान के साथ MTM 90.8 FM। देखो मतलब अब हर बार अपना मोबाइल नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी, आपको लोग आपको आपके यूजर नेम से ही ढूंढ सकते हैं व्हाट्सएप पर। सुनने में तो ये फीचर ना तो काफी शानदार है, जैसे सोशल मीडिया के बाकी अकाउंट है ना, इंस्टाग्राम पर जैसे हम यूजर नेम्स डालते हैं, फेसबुक पर अपना नाम डालते हैं और अपना आईडी मिल जाता है, कुछ इसी तरीके से व्हाट्सएप का भी होने वाला है, क्योंकि इससे ना तो आपकी प्राइवेसी और भी बेहतर हो सकती है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अपने इंडिया में इस फीचर की एंट्री फिलहाल रोक दी गई है। सरकार ने मेटा से कहा है कि अभी इस फीचर को भारत में लॉन्च ना किया जाए। वजह एक है कि भाई इसका गलत इस्तेमाल ना हो और फर्जी अकाउंट, ऑनलाइन फ्रॉड या किसी और की पहचान बनाकर किसी और को लूटना, ये सब चीजें इससे हो सकती है, तो इसका भी एक डर है। यानी फिलहाल सरकार और व्हाट्सएप के बीच इस फीचर को लेकर बातचीत चल रही है। जब तक सारी बातें साफ नहीं होती तब तक भारत में इसका रोल आउट रुका हुआ है। तो अगर आपने कहीं पढ़ा होगा कि व्हाट्सएप पर अब यूजर नेम आ गया है, तो अभी थोड़ा रुकिए, रुकिएगा, ये फीचर आने में थोड़ा वक्त है और जैसे ही लॉन्च होगा आपको अपने आप पता चल ही जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या फैसला होगा, जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा सबसे पहले मैं तो आपको बताऊंगा ही। तब तक सतर्क रहिए और किसी भी अनजान मैसेज या लिंक पर भरोसा मत कीजिएगा। सोशल मीडिया सोशल तरीके से यूज कीजिए और सुनते रहिए।

0: Adnasi Baat with RJ Adnan. Only on MGM 90.8 FM. Saath hai to baat hai.
1: कभी कभी प्यार बड़ी जोर से नहीं आता, बस धीरे से दस्तक देता है। एक चाय की दुकान, एक किताब और दो अनजाने चेहरे। वो रोज उस दुकान पर आती थी, अदरक वाली चाय और वही पुरानी किताब के साथ। और वो लड़का जो बस उसके आने का बहाना ढूंढता था। चाय तो कम पीता था लेकिन उससे बहुत देखता था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, आप रोज यही किताब क्यों पढ़ती हो? वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हर बार इसे पढ़ते हुए कोई ना कोई नया चेहरा नजर आ ही जाता है। और फिर वो दोनों हंस पड़े। कभी किताबों की बातें शुरू हुई और फिर जिंदगी की कहानी। छोटी थी लेकिन

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

स्टेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंग, जिथे शिकलं म्हणजे थेट इंडस्ट्री आणि जॉब रेडी होणं. सोच बदलो, इंस्ट्रुमेंटेशन के साथ रहो, अच्छा जॉब तो मिलना ही है. विजिट mgmu.ac.in और कॉल 9230877784.

बोली मैं तुम्हारा काकू आज तई कोई कोई पता तो पानी फुलवानी फुल विच दाते जाई दुई अरे मोट चाल ली मैं तुम्हारा काकू आज तई कोई कोई अन पता तो पानी फुलवानी फुल विच दाते जाई दुई धरती माता यही नाता ने तू नहीं रोले नर लेने गाव मोट वर्त गाने गाव

0: तुमच्या करिअरसाठी योग्य पर्याय शोधताय? इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये मिळवा फ्युचर रेडी प्रोग्रामची सुवर्ण संधी.
1: बीटेक इन कम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड मशीन लर्निंग, बीटेक इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, बीटेक इन डेटा सायन्स,
0: PG, एमटेक इन AI अँड ML, एमटेक डेटा सायन्स आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये PhD करण्याची संधी, किंवा निवडा 12वी नंतर डिप्लोमा इन सायबर सिक्युरिटी अँड डिजिटल फॉरेन्सिक.
1: ऍडमिशन्स ओपन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल ऑन 9404-94299.
0: क्या आप इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या फिर जापानी सीखना चाहते हैं, या फिर अरेबिक, संस्कृत, मराठी और उर्दू में माहिर बनना चाहते हैं?
2: तो MGM यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज लेकर आया है BA ऑनर्स इन इंग्लिश, MA इंग्लिश, MA मराठी, MA हिंदी, MA उर्दू, MA संस्कृत, PG डिप्लोमा इन अरेबिक. डिप्लोमा प्रोग्राम्स, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, जापानीज, पर्शियन एंड ट्रांसलेशन.
0: लिमिटेड सीट्स अवेलेबल. विजिट www.mgmu.ac.in और कॉल करें 9763-67-9245 or 9665353515.
3: MGM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.

0: हॅलो हाय नमस्कार छत्रपती संभाजी नगर
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM
2: जाते तो पाते
3: मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे यार करूं चाहे फूलों के साए से खेलूं चाहे कल

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांभो रे सांभो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।